कर फकर दायम लाए चश्मे जह तहां मौजूद। सतमें असमान विच बैठा समझण दी थां ते हे भाई ओ प्रभु रूप दरिया तां अंते करन विच लहरां मार रहा है, तू उस विच इशनान करना सी, सो सदा उस दी बंदगी कर, ज्ञान रूपी ऐनक ला के वेख, ओ हर थां मौजूद है। अल्लाह पाकं पाक है, शक करो जे दूसर होए, कबीर कर्म करीम का ओ करै जाने सोए। इस गल विच कोई शक नहीं कि परमात्मा सब तो पवित्र हस्ती है। मैं इस गल विच तां शक करां जे उस वर्गा कोई होर भी होवे तां। हे कबीर, ओ मनुख ही ये गल समझ सकता है जिसनू वाहिगुरु समझण योग कर देवे। ये बख्शिश उस परमात्मा दे अपने हाथ विच है, इसलिए बंदे खोज दिल हर रोज़ ना फिर परेशानी माहे।

कली बैठी हम मैं लेके आसार एक बारी मिले सजना जिंद अपनी मैं दीती है गवा एक बारी मिले सजना झूठ अंग साक सब झूठा संसारे झूठा संसारे रब नू विसार के झूठे नल कीता प्यार वे झूठे नल कीता प्यार वे रही खोटियां ते सच्चियां सुना एक बारी मिल सजना।

उसे सुनता ही रहता हूँ। लिखे हैं मन ने बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे, सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं, लिखे हैं मन ने। पहाड़ों से निकल कर जल नदी कहती, मेरे संग चल चले हैं।

बड़े यतन से तेरी महिमा में कुछ नगमे सुने तुमने भी इस मन से जो तुमने ही लिखाए हैं लिखे जो मन ने। ये हरियाली भरी वादी ये फूलों से लदी।

तेरिया किस काम दितिया ने आजा। इल्म पढ़िया ते अमल न किता हो। तेरिया किस काम कितिया बाता।

अपने वीरां नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी, जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोह कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। छड चली अज माए, छड चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं। छड चली अज माए, बाबले दी गली मैं, जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली मैं, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी। तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं।

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई जिस्म तरी जांदे, ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, की करां जे आपे चे की करां।

जे डूब गई जे संतरी जांद है, ओ डूब जाना जे भी वादे करी जांद है। जोर ना मंग दे नहीं आपी भला देवे क्यों, जोर ना मंग दे नहीं आपी भला देवे क्यों, गली बाती जे सदा

ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे, भगत सिंह ते कातलां दी गल पुरानी आख दे। ए कौन जो हक्कां लई, ए कौन जो हक्कां लई सूली चढ़ी जांदे। ओ डूब जाना अजे भी वादे करी जांदे। जिंद वादियां चे डूब गई, जिंद वादियां चे डूब गई।